0: जमेंजे जपतचाप सातो आका सातो पता मित्रु अदृष्ट जे कर्म जात उस्तत संपूर्ण
1: स्वाक महला पहला पे पांडे साजना पे पूर्ण गए एक नित समय एक चले रहन चले कने हाली पैसन एक

काका कवर प्रीत सिंह काकी हरगुन प्रीत कार लंगरा लई 150 रुपया आदर कर दे बच्चा नु विद्या दान बख्शना दीर्घ आयु दे रोगता बख्शनी माता सुखवंत का।

चेत आवन का सदका सर्व सुख होवे। खालसे जी की देख देख फतह चौकिया चंडे बुंगे जुगो जुग अटल रहे। धर्म का जयकार खालसा जी सावे बोला रे। खालसे जी नु नाम दान सुखी दान गुरमत दान बुद्ध विवेक रहत रक्षा दान। खालसे जी नो श्री हरिमंदर साहिब अमृतसर सरोवर जी दे शनान। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दर्शन दीदार मेले बुलारे। श्री अकाल तख्त साहिब जी बाबा अटल जी संतोख सर जी विवेक सर जी राम सर जी काल सर जी तरन तारण जी तापयाने जी खडूर जी गुरु की बावली। श्री गोविंदवाल साहब जी दे शनान दर्शन दीदार मेले बुलारे। थम जी ननकाने जी करतारपुर जी श्री बाबे नानकडेरे जी तख्त केसगढ़ साहब आनंदपुर जी कीरतपुर जी पातालपुर जी लखनौर जी चमकार जी दमदमे जी तम तान जी मुकतसर साहेब पामटा साहब तखत पटना साहब हरिमंदर दिल्ली में सीसगंज रकाबगंज बाला साहेब बंगला साहेब सतो चंडिया साहिबा जी दे सुख दे दर्शन दीदार मेले बुलारे।

0: रखनी सचे पातशाह जी महाराज।
1: गुरु प्यारी साध संगत जी सज जाओ, प्रेम नाल गुरु साहिब जी दी लड़ीवार कथा श्रवण करो जी।

अकाल हरि अपाल हरि अछेद हरि अभेद हरि अजंत्र हरि अमंत्र हरि सोतेज हरि अतंत्र हरि अजात हरि अपात हरि अमित्र हरि अमात हरि अरोग हरि अशोक हरि अभरम हरि अकरम हरि।

त्वा प्रसाद कबित खूकमल हरि गज गद हा विभूत दारी कि दुआ मसान बास करे ही करत है खूकमट बासी लग डोलत उदास मृग तरवर सदीव मोन साध ही मरत है बिंद के सथैयता हीज की बडैया दे दबंदरा सदीव पाए नांगे फिरत है अंगना अधीन काम क्रोध में प्रवीण एक ज्ञान के विहीन छीन कैसे कह तरत है भूत बन चार चित छौना सब दूधाधारी पौन के आहारी सोभ जंग जानियत है त्रिण के फसैया धन लोभ के तजैया तित गौवन के जैया ब्रिक भैया मानियत है नभ के उड़ैया ताहे पंछ की बडैया दे दब गुला बिडाल ब्रिक ध्यानी ठानियत है जेते बड़ ज्ञानी दिनो जानी पै बखानी ना है असन प्रपंच मन भूल आनियत है भूम के बसैया ताहे भूचरी के जैया कहे नभ के उड़ैया सोच रैया कह बखानी है फल के भजैया ताहे बांदरी के जैया कहे आदिश फिरैया ते तो भूत कह पछानी है जल के तरैया को गंगे ऋषि कहत जग आग के भजैया सोच कोर सम मानी है सूरज सिवैया ताहे कौल की बडाई दे चंद्रमा सिवैया को कवि के पहचानी है नारायण कछ मछ तेंदुआ कहत सब कौल नाव कौल जेह ताल में रहत है गोपीनाथ गुजर गोपाल सब धेन चारी लिखी के स नाम के महंत लहियत है माधव बवर ओ अटे रुगो कन्हैया नाम कंस को बधैया ज मदूत कहियत है मूड रूड पीटत न गूढ़ता को भेद पावे पूजत न ताहे जाके राखे रहियत है विश्वपाल जगत काल दीन दयाल वैरी साल सदा प्रतपाल जम जाल ते रहत है जोग जटा थारी सती सच बड़े ब्रह्मचारी ध्यान काज भूख प्यास देह पैसहत है न्योली करम जल होम पावक पवन होम अधोमुख एक पाए ठांड न बहत है मानव फनिंद देव दानव न पावे भेद भेद योग तेव नेत नेत कह कहत है नाचत फिरत मोर बांदर करत घोर दामनी अनेक भाव करे ही करत है चंद्रमात शीतल न सुरते तपत तेज इंद्र सोना राजा भव भूम को भरत है शिव से तपस्या ब्रह्मा से न वेदचारी सनत कुमार सी तपस्या न अनत है ज्ञान के विहीन काल फांस के अधीन सदा जोगन की चौकरी फिर आई फिरत है एक शिव भय एक गए एक फिर भय राम चंद्र कृष्ण के अवतार भी अनेक है ब्रह्मार विषण के तेद हो पुराण के ते सिमृत समूहन के होए होए बिताए हैं मुन दी मदार कित असुनि कुमार कित अंसावतार कित काल बस भय है पीर ओ पिकावर कित गण न परत एत भूमि ही तवि के फिर भूमि ही मिलाए है जोगी जाति ब्रह्मचारी बड़े बड़े छत्रधारी छत्र ही की छाया कई घोसलो चलत है बड़े बड़े राजन के दापत फिरत देश बड़े बड़े राजन के द्रप को दलत है मान से महीब ओ दिलीप कैसे छत्रधारी बड़ो अभिमान भुज दंड को करत है दारा से दिल्ली सरद्रुजोधन से मानधारी भोग भोग भूमांत भूम में मिलत है सिज दे करे अनेक तोप चीक पट फेस पोसती अनेक दा निवावत है शीस को कहा भयो मल जो पे काटत अनेक डंड सो दोनो डंडोत अस टांग अति तीस को कहा भयो रुग जो पे डार रहे उर्द मुख मन तेना मुंड निहरायो आद ईस को कामना अधीन सदा दामना प्रवीन एक भावना विहीन कसे पावे जगदीस को शीस पटकत जाके कान में खजूरा धस मुंड छटकत मित्र पुत्र हूँ के शोक सौ आंख को चरैय फल फूल को भचैय सदा बन को भ्रमैया और दूसरो न भूक सौ कहा भयो भेड़ जो घसत शीस बिछन सो माटी को भचैय बोल पूछ लीजे जो कुसौ कामना अधीन काम क्रोध में प्रवीण एक भावना विहीन कैसे भेट पर लोक सौ नाचो ही करत मोर दादर करत शोर सदा घन घोर घन करो ही करत है एक पाइन ठांडे सदा बन में रहत ब्रिज फूक फूक पाँ भूम श्रावक धरत है पाहन अनेक जुग एक ठौर बास करे काग और चीत देश देश बिचरत है ज्ञान के विहीन महादान में न हुजलीन भावना यकीन दीन कैसे कह तरत है जैसे एक स्वांगी कहूँ जो किया बरागी बने कब हूँ संन्यास भेष बन के दिखावई कहूँ पौन हारी कहूँ बैठ लाए तारी कहूँ लोभ की खुमारी सो अनेक गुण गावई
कहूँ ब्रह्मचारी कहूँ हाथ पे लगावे बारी कहूँ दंडधारी हो के लोग न भ्रमावई कामना अधीन पर्यो नाचत है नाचन सो ज्ञान के विहीन कैसे ब्रह्म लोग पावई। पंच बार की तर पुकार पर शीत काल कुंजर उगदहा अनेक ता पुकार ही कहा भयो जो पे कल वत्र लियो कांसी बीच चीर चीर चोर टाक उठारन सो मार ही कहाँ भयो फांसी डर बूढ़ जड़ गंग धार डार डार फांस ठग मार मार डार ही डूबे नरक धार मूड ज्ञान के बिना विचार भावना विहीन कैसे ज्ञान को विचार ही। ताप के सहित जो पे पाई अतापनाथ तापना अनेक तन घायल सहत है जाप के गीत जो पे पायत अजाप देव बोधना सदीव तुही उचरत है। नभ के उड़त जो पे नारायण पाइयत अनल आकाश पंछी डोल वो करत है आग में चरित गत रांड की परत कर पताल के बासी की उजंग न तरत है। को भयो मुंडिया सन्यासी को जो कि भयो को ब्रह्मचारी को जति अनुमान वो हिंदू तुरक को राव जी इमाम साफी मानस की जात सब एक पहचान वो करता करीम सुविराज कर रहीम उई दूसरो न भेद कोई भूल ब्रह्म मान वो एक ही किसेव सब ही को गुरुदेव एक एक ही स्वरूप सब एक ज्योत जान वो देहो राम सीत सोई पूजाओ निवाज ओई मान सब एक बयाने को भ्रमाव है देवता देव जश कंदरव तुरक हिंदू न्यारे न्यारे देशन के भेष को प्रभाव है। एक नयन एक कान एक देह एक वान खाग बाद आतस ओ आप को रलाव है अल्लाह अफेक सोई पुराण ओ कुरान ओई एक ही स्वरूप सब एक ही बनाव है। जैसे एक आग दे कनु का कोट आग उठे न्यारे न्यारे हो के फिर आग में मिलाहेंगे जैसे एक धूर दे अनेक धूर पूरत है धूर के कनु का फिर धूर ही समाहेंगे। जैसे एक नद दे तरंग कोट उपजत है पान के तरंग सब पान ही कहाहेंगे जैसे विश्वरूप ते अभूत भूत प्रकट हुए ताही ते उपज सब ताही में समाहेंगे। केते कछ मछ केते उनको करत फच केते अच वच हो सपच उड़ जाएंगे केते नभ बीज अच पच को करेंगे भज केतक प्रत्यक्ष हो पच

काल के बनाए सब काल ही जबाहेंगे। तेज ज्यों तेज में अतेज जैसे तेज लीन ताही ते उपज सब ताही में समाहेंगे। कुगत फिरत किते रोवत मरत किते जल में डुबत किते आग में जरत है। किते गंग बासी किते मदीना मक्का निवासी किते उदासी के ब्रह्माई फिरत है। करवत सहत किते भूम में गड़त किते सुआ पे चढ़त किते दुख को भरत है। ज्ञान में उड़त किते जल में रहत किते ज्ञान के विहीन जग जा रही मरत है। सोध हारे देवता विरोध हारे दानो बड़े बोध हारे बोधक प्रबोध हारे जापसी। घास हारे चंदन लगाए हारे चोआजार बूझ हारे बाहन चढ़ाए हारे लापसी। गाह हारे गोरन मनाए हारे मड़ी मंडली बहारे भीतन लगाए हारे छापसी। गाय हारे गंधर्व बजाए हारे किन्नर सब पच हारे पंडित तप

कर्मं न जन्मं न जातं न मित्रं न सत्रं न पितरं न मातं न नेहं न गेहं न कामं न धामं न पुत्रं न मित्रं न सत्रं न भामंग लेखं फेखं जोनि स्वरूपं सदा सिद्धदा बुद्धदा वृद्धरूपं नहीं जान जाई कछु रूप रेखं कहा बासता को फिर कौन फेखं कहा नामता को कहा कह कहा वह कहा कह बखानो कह मैं नावे न रोगं न शोकं न मोहं न मातं न कर्मं न भर्मं न जन्मं न जातं द्वेखं फेखं जोनि स्वरूपे नमो एक रूपे नमो एक रूपे परेयं परापरं प्रज्ञा प्रकाशी अछेदं गच्छेयाद अद्वय अविनाशी न जातं न पातं न रूपं न रंगे नमो आद भंगे नमो आद भंगे किते ग्रसन से कीट गोटे उपाय उसारे गड़े

अछेदंग फेदंग कर्मंग कालंग खंडंग भंडंग प्रचंडंग पालंग न तातंग न मातंग न जातंग न कायंग न नेहंग न गेहंग न भर्मंग न भायंग न रूपंग न भूपंग न कायंग न कर्मंग न त्रासंग न प्रासंग न भेदंग न भर्मंग सदैवंग सदा सिद्ध व्यर्थंग स्वरूपे नमो एक रूपे नमो एक रूपे नृयुक्तं प्रभादनुक्तं प्रतापे अयुक्तं गच्छयात् अविक्ते यथापे विभुक्तं गच्छयात् अच्छे स्वरूपे नमो एक रूपे न नेहं न गेहं न सुखं न साखं परेयं पवित्रं पुनीतं गताकं न जातं न पातं न मित्रं न मन्त्रे नमो एक तंत्रे न धर्मं न भर्मं न सर्मं न साके न बर्मं न चर्मं न कर्मं न बाके न सत्रं न मित्रं न पुत्रं स्वरूपे नमो आदरूपे कहूं कंज के मंज के भरम भूले कहूं रंग के राज के धर्म लूले कहूं देश के भेज के धर्म थामे कहूं राज के साज के बाज तामे कहूं अक्षर के पक्षर के सिद्ध साधे कहूं सिद्ध के बुद्ध के वृद्ध जाते कहूं अंग के रंग के संग देखे कहूं जंग के रंग पेखे कहूं धर्म के कर्म के हरम जाने कहूं धर्म के कर्म के भरम माने कहूं चार चेष्टा कहूं चित्र रूपं कहूं परम प्रज्ञा कहूं सर्वभूपं कहूं नेह ग्रेहं कहूं देह दुखं कहूं औषधि रोग के सुख सुखं कहूं देव विद्या कहूं दैद वाणी कहूं जक्ष गंधर्व किन्नर कहानी कहूं राजसी सादगी तामसी हो कहूं जोग विद्या धरे तापसी हो कहूं रोग रहता कहूं जोग जुगतं कहूं भूमि की भुगत मैं भरम भुगतं कहूं देव कन्या कहूं दान भी हो कहूं जक्ष विद्या धरे मान भी हो कहूं राजसी हो कहूं राज कन्या कहूं सृष्ट के पृष्ठ के ऋष पन्या कहूं वेद विद्या कहूं व्योम वाणी कहूं कोक की काव कथा कहानी कहूं अद्र सारंग कहूं भद्र रूपं कहूं मद्र वाणी कहूं छुत्र स्वरूपं कहूं वेद विद्या कहूं काव रूपं कहूं चेष्टा चार चित्रं स्वरूपं कहूं परम पुराण को पार पावे कहूं बैठ कुरान के गीत गावे कहूं सूत सिखं कहूं ब्रह्म धर्मं कहूं वृद्ध अवस्था कहूं बाल कर्मं कहूं ज्वाल स्वरूपं जरा रहत देहं कहूं नेह देहं कहूं त्याग गृहं कहूं जोग भोगं कहूं रोग रागं कहूं रोग हर्ता कहूं भोग त्यागं कहूं राज साजं कहूं राज रितं कहूं पूर्ण प्रज्ञा कहूं परम प्रीतं कहूं आरबी तोर की बारसी हो कहूं पहलवी पस्तवी संस्कृति हो कहूं देश भाख्या कहूं देव बानी कहूं राज विद्या कहूं राजधानी कहूं मंत्र विद्या कहूं तंत्र सारं कहूं जंत्र रीतं कहूं शस्त्र धारं कहूं होम पूजा कहूं देव अर्चा कहूं पिंगला चारणी गीत चर्चा कहूं वीन विद्या कहूं गान गीतं कहूं मलेज भाख्या कहूं वेद रीतं कहूं नृत्य विद्या कहूं नागबानी कहूं गारुडू गूढ़ कथा कहानी कहूं अक्षरा पक्षरा मच्छरा हो कहूं वीर विद्या अभूतं प्रभा हो कहूं छैल छाला धरे छत्रधारी कहूं राज साजं धे राजाधिकारी।

अनुभूत करम दाता दयाल अनुभूत धर्म। जय सत्र मित्र नहीं जन्म जात, जय पुत्र भ्रात नहीं मित्र मात, जय करम भरम नहीं धर्म ध्यान, जय नेह नहीं प्योतबान। जय जात पात नहीं सत्र मित्र, जय नेह गेह नहीं चिहन चित्र, जय रंग रूप नहीं राग रेख, जय जन्म जात नहीं वरम भेख। जय करम भरम नहीं जात पात नहीं नेह गेह नहीं पितृ मात, जय नाम थाम नहीं वर्ग व्याध, जय रोग शोक नहीं सत्र साध। जय त्रास वास नहीं देह नास, जय आद अंत नहीं रूप रास, जय रोग सोग नहीं जोग जुगज, जय त्रास आस नहीं भूम भुगत। जय काल ब्याल कट्यो नांग, अच्छा स्वरूप अखय अभंग, जय नेत नेत उचरंत वेद, जय अलख रूप कथत कतेब। जय अलख रूप आसन डोल, जय अमित तेज अक्षय अतोल, जय ध्यान काज मुंजन अनंत, कई कल्प जोग साधत दुरंत। तन सीत घाम वर्खा सहंत, कई कल्प एक आसन बितंत, कई जतन जोग विद्या विचार, साधंत तद पावत न पार। कई उर्ध बाह देसन भ्रमंत, कई उर्ध मध्य पावक झुलंत, कई सिमृत शास्त्रत उचरंत वेद, कई गोक काव कथत कतेब। कई अग्नहोत्र कई बौनहार, कई कर्त कोट मृत को आहार, कई कर्त साक पै पत्र भच्छ, नई तदब देव होवत प्रत्यक्ष। कई गीत गान गंधर्व रीत, कई वेद शास्त्र विद्या प्रतीत, कहूँ वेद रीत जग याद करम, कहूँ अग्नहोत्र कहूँ तीर्थ धर्म। कई देश देश भाखा रटंत, कई देश देश विद्या बढ़ंत, कई कर्त भांत भांतन विचार, नहीं नैकता सपा यत्न पार। कई तीर्थ तीर्थ भरमत सोभरम, कई अग्नहोत्र कई देव करम, कई कर्त वीर विद्या विचार, नहीं तदपता सपा यत्न पार। कहूँ राज रीत कहूँ जोग धर्म, कई सिमृत शास्त्रत उचरत सो करम, न्योली याद करम कहूँ हस्तदान, कहूँ अश्वमेध मुख को बखान। कहूँ करत ब्रह्म विद्या विचार, कहूँ जोग रीत कहूँ वृद्ध चार, कहूँ करत चक्ष गंधर्व गान, कहूँ धूप दीव कहूँ अर्घ दान। कहूँ पितृ करम कहूँ वेद रीत, कहूँ नृत्य नाच कहूँ गान गीत, कहूँ करत शास्त्र सिमृत उचार, कहीं भजत एक पग निराधार। कई नेह देह कई गेह वास, कई ब्रह्मत देश देश अनुदास, कई जल निवास कई अगन ताप, कई जपत उर्ध लटकंत जाप। कई जपत जो कल्पं प्रजंत, नहीं तदप तास पायतनांत, कई कर्त कोट विद्या विचार, नहीं तदप दिष्ट देखे मुरार। बिन भगत सगत नहीं परत पान, बहु कर्त हो मर जग दाम, बिन एक नाम एक चित्त लीन, भो कुटो सर्व धर्मा विहीन। त्व प्रसाद तोटक छंद, जय जम्पह जुगण जूह जुवंग, भय कंपह मेर पयाल भुवंग, तप तापत सर्प जलेर धलंग, धन उचरत इंद्र कुमेर बलंग। अनखेत स्वरूप अभेद भयंग, अनखंड अभूत छेद छयंग, अनकाल अपाल दयाल सुवंग, जय ठट्यंग मेर आकाश भुवंग। अनखंड अमंड प्रचंड नरंग, जय रचयंग देव देव वरंग, सबकीनी दीन जमीन जमा, जय रचयंग सर्व मकीन मकां। जय राग न रूप न रेख रुखंग, जय ताप न साप न सुख सुखंग, जय रोग न शोक न भोग भुयंग, जय खेद न भेद न छेद छयंग। जय जात न पात न मात पितंग, जय रचयंग छत्री छत्र छितंग, जय राग न रेख न रोग बणंग, जय द्वैख न दाग न दोख गणंग। जय अंड ते ब्रह्मंड रचियो, दस चार करी नवखंड सचियो, रज तामस तेज तेज कियो, अनुभव पद आप प्रचंड लियो। श्रेय सिंधु बिंद नगिंद नगंग, श्रेय जक्ष गंधर्व फणिंद भुजंग, रज देव देव अभेव नरंग, नरपाल नृपाल कराल त्रिगंग। कई कीट पतंग भुजंग नरंग, रच अंडज से तज उद भुजंग, किए देव देव सराद वितंग, अनखंड प्रताप प्रचंड गतंग। प्रभ जातन पातन ज्योत जुतंग, जय तातन मातन भ्रात सुतंग, जय रोग न शोक न भोग भुवंग, जय जम्पह किन्नर जाच जुवंग।
नर नारण पुंसक जाहि किए गणग नर जाछ भुजंग दिए गज बाज रथाद पांत गणंग बहुत भवेख भवान तुअंग जेहे अंडज सेतज जेर रजंग रज भूम आकाश पताल जलंग रज पावक पौन प्रचंड बली बन जास कियो फल फूल कली ओ मेरा आकाश निवास चितंग रज रोज एकादश चंद्र वृतंग दुध चंद दिनी सह दीप दई जय पावक पौन प्रचंड मई जय खंड अखंड प्रचंड किए जय चतुर उपाय छपाए दिए जय लोक चतुर्दशार रचे नर गंधर्व देव देव सच्चे अंधूत भूत छूत मतंगन काद ब्याद नाद गतंगन खेद अभेद अछेद नरंग जय चार चतुर्दिश चक्र फिरंग जय राग न रंग न रेख रुगंग जय रसोक न भोग न जोग जुगंग भू भंजन गंजन आदि सरंग जय बंदत देव देव नरंग गण किन्नर जाच भुजंग रचे मण माणक मोती लाल सुचे अन भंज प्रभा अन गंज वृतंग जय पार न पावत पूर मतंग अनखंड स्वरूप दंड प्रभा जय जंपद वेद पुराण स्वभाव जय वेद कतेब अनंत कहे जय भूत भूत न भेद लह जय वेद पुराण कतेब जप सुत सिंध अधो मुख ताप तप कई कल्पन लो तप ताप कर नई नैक कृपा निध पान पर जय होकर धरम सब है तह एक चित्त कृपा निध को जप है त्यो या भव सागर को तर है भव भूल न देह पुनर्धर है एक नाम बिना नहीं कोट प्रति इम वेद उचार दसार सुती जो वारस के चस के रस है त्यो भूल न काल फंदा फस है।

न सिंह है न स्याल है न राव है न रंग है न मान है न मौत है न साक है न संग है न जच है न गंधर्व है न नर है न नार है न चोर है न साव है न साह को कुमार है न नेह है न गेह है न देह को बनाओ है न छल है न छिद्र है न छल को मिलाओ है न जंत्र है न मंत्र है न तंत्र को स्वरूप है न राग है न रंग है न रेख है न रूप है न जंत्र है न मंत्र है न तंत्र को बनाओ है न छल है न छिद्र है न छाया को मिलाओ है न राग है न रंग है न रूप है न रेख है न कर्म है न धर्म है जन्म है अभेक है न तात है न माद है अख्याल खंड रूप है अछेद है अभेद है न रंग है न भूप है परे है पवित्र है पुनीत है पुराण है अगंज है अभंज है करीम है कुरान है अकाल है अवार है ख्याल है अखंड है न रोग है न सोग है न भेद है न भंड है न अंग है न रंग है न संग है न साध है प्रिया है पवित्र है पुनीत है प्रमाथ है न सीत है न सोच है न घ्राम है न घाम है न लोभ है न मोह है न क्रोध है न काम है न देव है न दैत है न नर को स्वरूप है न छल है न छिद्र है न छिद्र के विभूत है न काम है न क्रोध है न लोभ है न मोह है न द्वैख है न भेक है न दुई है न द्रोह है न काल है न बाल है सदीव दयाल रूप है अगंज है अभंज है अभरम है अभूत है अछेद छेद है सदा गंज गंज गंज है अभूत अभेक है बलिया रूप राग रंग है न द्वैख है न भेक है न काम क्रोध कर्म है न जात है न पात है न चित्र चिहन वर्ण है बेअंत है अनंत तेज जानिए भूम भिज है सदा छिज तेज मानिए न आध है न व्याध है अगाध रूप देखिए अदोग है अदाग है अच्छे प्रताप देखिए न कर्म है न फरम है न धर्म को प्रभाव है न जंत्र है न तंत्र है न मंत्र को ललाव है न छेद छल है न छिद्र है न छिद्र को स्वरूप है अभंग है अनंग है अगंज सी विभूत है न काम है न क्रोध है न लोम मोहकार है न आध है न गाध है न व्याध को विचार है न रंग राग रूप है न रूप रेखरार है न हाव है न भाव है न दाव को प्रकार है गजाधपि नराधपि गरंत सेव है सदा सिद्धस्पति तपस्पति वनस्पति जपस सदा अगस्त आदि जे बड़े तपस तपि विसेखिय बेअंत बेअंत बेअंत को गरंत पाठ वेखिय अगाध आदि देव की अनाद बात मानिए न जात पात मंत्र मित्र शत्रु सने जानिए सदीव सर्व लोग के कृपाल ख्याल में रहे तुरंत द्रोह देह के अनंत फांद सोत है

हस्त कीड़ विखै बसै सब ठौर मैं निरधार। जात पात ना तात जागो मंत्र मात ना मित्र सर्व ठौर विखै रम्यो जय चक्र चिहन न चित्र। आद देव उदार मूर्त गाद नाथ अनंत आद अंत न जानिए अभिखात देव दुरंत। देव भेव न जान ही जे मरम वेद कतेब सन कौसन केश नंदन पाव ही न सेब। जछ किन्नर मछ मानस मुर्ग उर्ग पार नेत नेत पुकार ही शिव सकर ओ मुख चार। सर्व सपद बतार गए

सर्व कर्ता सर्व हर्ता सर्व के अनकाम, सर्व खंडन सर्व दंडन सर्व के निज भाम, सर्व भोग

दुष्ट दंडन पुष्ट खंडन आदि देव खंड भूम का जले थले मह जबत जाप मंड श्रेष्ठ चार विचार जेते जानिए सब चार आदि देवा पासरी बद दुष्ट पुष्ट प्रहार अन्नदाता ज्ञान ज्ञाता सर्व मान महेंद्र वेद व्यास करे कई दिन कोट इंद्र उपेंद्र जन्म जाता कर्म ज्ञाता

को आत्मा स्वरूप है कहाँ सृष्टि को विचार, कौन धर्म को कर्म है कहो सकल विस्तार। दोहरा कह जी तब कह मरण है, कवन सुरत कह नरक, को सुखुड़ा को मूढ़ता कहाँ

कवन सृष्ट को पुष्ट है कहाँ सृष्ट को विचार, कवन सृष्ट को भ्रष्ट है कहो सकल विस्तार। दोहरा कहाँ कर्म को कर्म है कहाँ भ्रम को नाश, कहाँ चेतन की चेष्टा।

दुर्जल दंडन असुर बिहंडन दुष्ट निकंदन आदि वृते जचरा सुर मारण पति दो धारण नरक निवारण गूढ़ गति अच्छे अखंडे तेज प्रचंडे खंड उदंडे अलख मते जय जय हो सी मासुर मर्दन रंभक बर्दन छत्र छिते आसुरी बिहंडन दुष्ट निकंदन पुष्ट उदंडन रूप ते चंडा सुर चंडन मुंड बिहंडन धूम्र विधुंसन महक मथे दान प्रहारण नरक निवारण अधम उदारण ऊर्ध अधे जय जय हो सी मासुर मर्दन रंभक बर्दन आदि वृते डावरूढ़ वंगे बबर बवंगे भुजा फरंगे तेज बरंग लंकुड़िया फांधे आयुध बांधे सैन विमोर्दन काल सुरंग अष्टायत जमके भूखण तमके अतसे जमके फुंक फनंग जय जय हो सी मासुर मर्दन रम कबर्दन दैद जिनंग चंडा सुर चंडन मुंड विमुंडन खांडे अखंडन खून खिते दामनी दमंकण धुजा फरंकण फणे फुंकारण ज्योति जिते सरधार विवरखण दुष्ट प्रकरखण पुष्ट प्रहरखण दुष्ट मथे जय जय हो सी मासुर मर्दन भूम आकाशल ऊर्ध अथे दामनी प्रहासन सुषभ निवासन श्रेष्ठ प्रकाशन गूढ़ गते रक्ता सुर आजन ज्योति ब्रह्माचन हृदय नराचन धर्म प्रति श्रोणंत अचिंती अनल विवंती जोग जयंती खड़ग धरे जय जय हो सी मासुर मर्दन पाप विनाशन धर्म करे अघोघ निवारण दुष्ट प्रचारण श्रेष्ठ उवारण शोध मते फणियर हुंकारण बाघ बकारण शस्त्र प्रहारण साध मते सहती सन्नाहन अष्ट प्रवाहन बोल निवाहन तेज तुलंग जय जय हो सी मासुर मर्दन भूम आकाश पताल जलंग चाचर चमकारण चिच्छुर हारण धूम धुं कारण द्रव मथे दाढ़वी व्रतंते जोग जयंते मरुज मथंते कूड़ कथे करम प्रणासन चंद्र प्रकाशन सूर्य

कारण धर्म दुजे अष्टाड प्रहा संसृष्ट निवासन दुष्ट प्रणासन चक्र गति केसरी प्रवाह सुध सन्ना हे अगम था हे एक वृते जय जय हुसी मै खा सुर मर्दन आद कुमार गाध वृते सुर नर मुन बंदन दुष्ट निकंदन पृष्ट विनाशन मृत मथे कावरु कुमार अधम उधारे नरक निवारे आद कथे किंकिणी प्रसोहन सुर नर मोहन सिंहारोहन वितल तले जय जय हुसी सब ठौर निवासन बाय बताल कासन ले संकटी निवारण अधम उधारण तेज प्रकरखण दुंद तवे दुख दोख दहंती ज्वाल जयंती याद अनाद गाद छे शुद्धता समर्पण तर्क वितर्कण तबत बतापण जबत जिवे जय जय होसी शास्त्र प्रकरखण आद नील गाद भे चंचला चखंगी अलग भुजंगी तुंद तुरंगण तिच्छ सरे कर कसा कुठारे नर्क निवारे अधम उधारे तूर भुजे दामनी दमंके के हर लंके आद तंके क्रूर कथे जय जय होसी रक्ता सुर खंडन सुंभ चक्रतन सुंभ मथे बारज बिलोचन प्रतन विमोचन सोच विसोचन कौच कसे दामनी प्रहा से सुख सरना से सुभ्र सुभा से दुष्ट कसे चंचला प्रहंगी वेद प्रसंगी तेज तुरंगी खंड सुरंग जय जय होसी मैं खा सुर मर्दन आद अनाद काधोर्धन कंट का बिराजे रुण झुण बाजे ब्रह्म भाजे सुनल सुरंग को किल सुन लाजे किल विग भाजे सुख उपराजे मध उरंग दुर्जन दल दज्जे मंत्र रिज्जे सवै न भज्जे रूह रणंग जय जय होसी मै खा सुर मर्दन चंड चक्रतन आद गुरंग चाचरी प्रजोधन दुष्ट विरोधन रोष रोधन क्रूर वृते धूमराज विधुंसन प्रलय प्रजुंसन जग विधुंसन सुध मते जाल पजयंती सत्र मथंती दुष्ट प्रदा

डुक डुकी दबंगे भागव पंगे भुजा फरंगे शुद्ध गति जय जय हो शिवय खास मर्दन आदि जुगाद अनाथ मते चछरा सुरमारण नरक निवारण पद दो धारण एक फटे पापान बिहंडन दुष्ट प्रचंडन खंड अखंडन काल कट्टे चंद्रानन चार नरक निवारे बद दो धारे मुंड मथे जय जय हो सी मैं खा सुर मर्दन धूम्र विधुंसन आद कथे रक्ता सुर मर्दन चंड चक्र दंदान वर्दन विडाल वधे सरदार विवर खन दुर्जन धरखन अतुल अमर खन धरम धुजे धूमराज विधुंसन श्रोणत चुनसन सोमभन।

अंजन विहीन अनभंजनाद जल थल प्रभाव सर्वत्र साथ। जय जात पात नहीं भेद भरम, जय रंग रूप नहीं एक धर्म, जय शत्रु मित्र दो एक सार, अच्छा स्वरूप अविचल पार। जानी न जाय जय रूप रेख, कहे बास तास कहे कौन भे, कहे नाम तास है कवन जात, जय शत्रु मित्र नहीं पुत्र भ्रात। करुणा निधान कारण स्वरूप, जय जक्र चिहन नहीं रंग रूप, जय खेद भेद नहीं कर्म काल, सब जीव जंत के करत पाल। ऊर्धंग बिरहत सिद्धंग स्वरूप, बुद्धंग पाल जुद्धंग अनूप, जय रूप रेख नहीं रंग राग, अंछिज तेज अनभिज दाग। जल थल महीप बंतन दुरंत, जय नेत नेत निसिदिन उचरंत, पायो न जाय जय पैर पार, दीनान दुख तहता उदार। कई कोट इंद्र जय पान हार, कई कोट रुद्र जुगिया द्वार, कई वेद व्यास ब्रह्मानंत, जय नेत नेत निसिदिन उचरंत। त्व प्रसाद सवैये दीनन की प्रतपाल करे, नित संत उपार गनी मन गारे, पछ पशु नक नाक नराधिप, सर्व समय सबको व्रत पारे। पोखत है जल मै थल मै पल मै, कल के नहीं करम बिचारे, दीन दयाल दयानिद दोखन, देखत है पर देत नहारे। दाहत है दुख दुखन कौदल दुजन के, पल मै दल डारे, खंड अखंड प्रचंड वहारन, पूर्ण प्रेम की प्रीत संभारे। पार न पाए सके पद्मावत, वेद कते व भेद उचारे, रोज ही राज बिलोकत राजक, रूख रुहान की रोज नटारे। कीट पतंग कुरंग भुजंगम, भूत भवेख भवान बनाए, देव देव खपे अहम एव न भेव, लख्यो भ्रम शिव भरमाए। वेद पुराण कतेव कुरान, वेद पुराण कतेव कुरान, हसेव थके कर हाथ न आए, पूर्ण प्रेम प्रभाव, बिना पद स्यों किन श्री।

दीन दयाल दया कर श्रीपद सुंदर श्री पद्मापत ए है। काम न क्रोध न लोभ न मोह न रोग न शोक न भोग न भय है। देह विहीन स्नेह सभोधन नेह विरक्त के है। जान को दे दे जान को दे दे जमीन को दे दे जमान को दे है। काहे को डोलत है तुमरे सुत सुंदर श्री पद्मापत ल है। रोगंते अर सोगंते जल जोगंते बहु भांत बचावे। सत्र अनेक चलावत गाव तऊ तन एक न लागन पावे। राखत है अपनो कर दय कर पाप समूह न फेटन पावे। और की बात कहा कह दो सो सो पेट ही के बड़ बीच बचावे। जाच भुजंग सो दानव देवा भेव तुम्हें सब ही कर ध्यावे। भूम आकाश पताल रसातल जाच भुजंग सब है सिर न्यावे। पाए सके नहीं पार प्रभाहु को नेत ही नेत भेद बतावे। खोज थके सब ही खुजिया सुर हार परे हर हाथ न आवे। नारद से चतुरानंद से रुमनारिक से सब हो मिल गायो। वेद कतेव न वेद लखयो सब हार परे हर हाथ न आयो। पाय सके नहीं पार उमावत सिद्ध सनाद सनंतन ध्यायो। ध्यान धरो तह को मन मै जय को अमितोज सब जग छायो। वेद पुराण कतेव कुरान अभेद नृपान सब बचहारे। भेद न पाय सके अन भेद को खेदत है अनछेद पुकारे। राग न रूप न रेख न रंग न साक न शोक न संग तिहारे। आद अनाद अगाध अपेख अद्वेख जप्यो तिन्हि गुलतारे। तीर्थ कूट किए स्नान दिए बहुदान महाव्रत धारे। देश फिरो कर भेष तपोधन केस धरे न मिले हर प्यारे। आसन कूट करे अष्टांग धरे बहुन्यास करे मुख कारे। दीन दयाल अकाल भजे बिन अंत को अंत के धाम सिधारे। व प्रसाद कबित अत्र के चलैया चित छत्र के धरैया। छत्र धारियों के छलैया महासत्रण के साल है। दान के देवैया महामान के बढ़ैया। वसान के देवैया है कटैया जम जाल है। युद्ध के जितैया विरुद्ध के मिटैया। महाबुद्ध के देवैया महामान हूँ के मान है। ज्ञान हूँ के ज्ञाता महाबुद्धता के दाता। देव काल हूँ के काल महाकाल हूँ के काल है। पूर्वी न पार पावे हिंगुला हिमालय ध्यावे। गोर कर दे जी गुण गावे तेरे नाम है। जोग जोग साधे पौन साधना कितेक बांधे आरब।

फराके फिरंगी माने कंधारी कुरे सी जाने पछम के पछमी पछान निज काम है मरहटा मंगे दे तेरे मन सो तपस्या कर दिड़ वे तिलंगी पहचाने धर्म धाम है। बंग के बंगाली फिर हंग के फिरंगा वाली दिल्ली के दिल वाली तेरी आज्ञा में चलत है। रोह के रोहले माघ देश के मंगेर वीर बंग सी बुंदेले पाप पुंज को मलत है। गोखा गुन गावे चिन मचीन के शीस ने आवे ते बते दे आए दुख देह के दलत है। जिने तोहे दयाओ तिने पूर्ण प्रताप बायो सर्व धन धाम फल फूल सफलत है। देव देवतान को सुरेश दानवान को महेश गंग धान को अभेश कहियत है। रंग में रंगीन राग रूप में प्रवीण और काहू पे न दीन साध दीन कहियत है। पाइये न पार दे पुंज में अपार सर्व विद्या के उदार है अपार कहियत है। हाथी की पुकार पल पाछे पहुँचत है चीटी की जिंगार पहले ही सुनियत है। किते इंद्र द्वार किते ब्रह्मा मुख चार किते कृष्ण अवतार किते राम कहियत है। किते ससरासी किते सूरज प्रकाश किते मुंडिया उदासी जोग द्वार दहियत है। किते महादीन किते व्यास प्रवीण किते कुमेर कुलीन किते जच कहियत है। करते हैं विचार पैन पूर्ण उक पावे पार ताही ते अपार निराधार लहियत है। पूर्ण अवतार निराधार है न पारवार पाई न पार व्यापार के बखानी है। अद्वय अविनाशी परम पूर्ण प्रकाशी महारूप हूँ के राशि है अनासी के कमानी है। जंत्र हूँ न जात जा की बाप हूँ न मायता की पूर्ण प्रभा के सो छटा के अनमानी है। तेज हूँ को तंत्र है के राजसी को जंत्र है के मोहनी को मंत्र है निजंत्र के जानी है। तेज हूँ कुतर है के राजसी को सर है के शुद्धता को घर है के सिद्धता के सार है। कामना की खान है के साधना किसान है विरक्तता की बान है के बुद्ध को उतार है। सुंदर स्वरूप है के हुपन को भूप है के रूप हूँ को रूप है कुमत को प्रहार है। दीनन को दाता है गनीमन को गारक है साधन को रचक है गुणन को पहार है। सिद्ध को स्वरूप है के बुद्ध को विभूत है के क्रोध को भूत है के अच्छे अविनाशी है। काम को कुनिंदा है के खूबी को दिहंदा है गनीमन गरिंदा है के तेज को प्रकाशी है। काल हूँ के काल है के शत्रुन के सार है के मित्रन को भोगत है के वृद्धता की बासी है। जोग हूँ को जंत्र है के तेज हूँ को तंत्र है के मोहनी को मंत्र है के पूर्ण प्रकाशी है। रूप को निवास है के बुद्ध को प्रकाश है के सिद्धता को वास है के बुद्ध हूँ का घर है। देवन को देव है निरंजन अभेव है अदेवन को देव है के सिद्धता को सर है। जान को बचैया है ईमान को दिवैया है जमजाल को कटैया है के कामना को कर है। तेज को प्रचंड है अखंडन को खंड है महीपन को मंड है के स्त्री है नर है। विश्व को भरण है के आपदा को हरण है के सुख को करण है के तेज को प्रकाश है। पाई है न पार पारावार हूँ को पार जाको की जत विचार सो विचार को निवास है। हिंगुला हिमाल गावे हा बसी हल बिधावे पूर्व बिना पार पावे आसत अनास है। देवन को देव महादेव हूँ के देव है निरंजन अभेवना दयादव अविनाशी है। अंजन विहीन है निरंजन प्रवीण है के सेवक अधीन है कटैया जम जाल के। देवन के देव महादेव हूँ के देवनाथ भूम के भुजैया है मोहैया महाबाल के। राजन के राजा महासाज हूँ के साजा महाजोग हूँ के जोग है धरैया द्रोम छाल के। कामना के कर है के बुद्धता को हर है के सिद्धता के साथी है के काल है कुचाल के। छीर कैसी छीरावत छाछ कैसी छतरा नेर छपा कर कैसी छप काल इंद्री के कूल के। हंसनी से सिहर महीरा सी हो सेना बाधा गंगा कैसी धार जली सातों से दरूल के। पारसी पलाऊ गढ़ रूपा कैसी रामपुर सोरासी सुरंगाबाद नी के रही झूल के। चंपासी चंदेरी कोट चांदनी सी चांदागढ़ कीरत तिहारी रही मालती सी फूल के। फटक सी कैलाश कमाऊ गढ़ कांसी बूर सी ससी रंगाबाद नी के सोहियत है। हिमा सी हिमालय हर हार सी हलब्बा नेर हंस कैसी हाजीपुर देख मोहियत है। चंदन सी चंपावती चंद्रमा सी चंद्रगिर चांदनी सी चांदागढ़ जोन जोहियत है। गंगा सम गंग धार बकान सी बिरंदवाद कीरत तिहार की उजियारी सोहियत है। फरासी फिरंगी फरासी के तुरंगी मकरान मकरान के मृदंगी तेरे गीत गाइयत है। बकरी कंधारी गोर गखरी गिरदजाचारी बौन के आहारी तेरो नाम ध्यायत है।
वो रब पलाउ काम रूप कराम कमाओ सर्व ठौर मैं विराज जहाँ जहाँ जाइयत है पूर्ण प्रतापी जंत्र मंत्र देता पिनाथ कीरत तिहारी को न पार पाइयत है।

मंचत वह उदम जहाँ आहर हर जियो परिया सैल पथर मह जंत उपाय ताका रजक आगे कर धरिया मेरे माधव जी सत्संगत मिले सो तरिया गुर प्रसाद परम पद पाया सूके काष्ट हरिया रहाव जन पिता लोक सुत बंता कोई न किसकी धरे।

हट कर्म करंता से भगत भले जन नानक जी जो भावे मेरे हर भगवंता तू आदि पुरख अपरंपर करता जी तुद जे वडियावर ना कोई तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी तू नह चल करता सोई तुद आपे भावे सोई वरत जी तू आपे करह सोई तुद आपे सृष्ट सब उपाई जी तुद आपे सिरज सब गोई जन नानक गुण गावे करते के जी।

सोई थीसी जो तू दहे सोई हाँ पाई रहाव सब तेरी तू सबनी ध्याया जिसनु कृपा करह तन नाम रतन पाया गुरमुख लाधा मनमुख गवाया तुद आप विछोड़िया आप मिलाया तू दरियाओ सब तुझ ही माहे तुझ बिन दूजा कोई नाहे जी जंत सब तेरा खेल विजोग मिल विछड़िया संजोगी मेल जिसनु तू जाना है सोई जन जाने हर गुण सद ही आख वखाने जिन हर सेविया तिन सुख पाया सहजे ही हर नाम समाया तू आपे करता तेरा किया सब होए तुद बिंदु जा अवर ना कोए तू कर कर वेखह जाने सोए जन नानक गुरमुख प्रगट होए आसा महला पहला तित सरवरड़ भैले निवासा पानी पावक तिन है किया पंक जो मोह पग नहीं चाले हम देखा तह डूबी अले मन एक न चेतस मोह।

सकल प्रजा जिन आप सवारी सिवकण को सिवगुण सुख दियो सत्रण को पल मुह पद कियो घट घट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत छींटी ते कुंचरिय स्थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछान घट घट के पट पट की जान जा बुध करख करा कर तारा प्रजा धर तब देहे अपारा जब आकर्ख करत हों कब हूँ तुम मैं मिलत दे धर सब हूँ जेते बदन सृष्ट सब धारे आप आपनी बूझ उचारे

बरंत भिन्न भिन्न तोहे तेती तुमरा लखान जाए पसारा कह विद सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप स्वरूपा रंक भयो राव कई भूपा अंडज जे रज से तज कीनी उतभुज खान बहर रच दीनी काहूं फूल राजा हुए बैठा काहूं सिमट भयो संकर कैठा सगरी सृष्ट दिखाए अचंभव आद जुगाद स्वरूप स्वयंभव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख उबार असिख संघरो दुष्ट जिते उठवा तुत पाता सकल मलेच्छ करो रण घाता जे असुधजता शरणी परे तिनके दुष्ट दुखत होए मरे पुरख जवन पग परे तहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक बार धिए हैं ताके काल निकट नह रक्षा होए ताहि सब काला दुष्ट अरिष्ट टरै तत्काला कृपा दृष्टन जाय निहर हो ताके ताप तनक मह हर हो रिद सिद्ध घर मुँह सब होई दुष्ट छा छय सकै न कोई एक बार जिन तुम्हें संभारा काल फांसते ताहि उबारा

दुष्ट दोख ते लिहु बचाई, कृपा करी हम पर जग माता, ग्रंथ करा पूर्ण सबराता, केलविक सकल देह को हरता, दुष्ट दोखियन को क्षय करता, श्री अद्वज भय दयाला, पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला, मन बांशद फल पा

चौपई सम सत्र सहस भणी जय अर्ध सहस फुन तीन कहे जय भादव सुधि अष्टमी रवारा तीर सत द्रव ग्रंथ सुधारा।

राम कथा जुग जुग अटल सब कोई भागत नेत स्वर्ग बा स्वर्ग बर करा सगरी पुरी समेत चौपई जो एह कथा सुने अर गावे दुख पाप तह निकट न आवे बिशन भगत किए फल होई आद ब्याछ सकै न कोई सम सत्रह सैस पचावन हाड वदी प्रथम सुख दावन तौ प्रसाद कर ग्रंथ सुधारा भूल परि लौ लेहु सुधारा दोहरा।

श्लोक महला पहला सच्चे तेरे खंड सच्चे ब्रह्मांड सच्चे तेरे लो सच्चे आकार सच्चे तेरे करने सिर्फ विचार सच्चा तेरा अमर सच्चा देवान सच्चा तेरा हुक्म सच्चा फरमान सच्चा तेरा कर्म सच्चा।

भले हार एक व्रत वसया तेरा अंत न जाए लख्या रहा जात मह जोत जोत मह जाता अकल कला भरपूर रहया तू सच्चा साहिब सुवाले।